0: कदम चढ़ाओ, फिनी रंजन मचाओ,
1: सिख सिख गुण विचार, नदी कन्नंगाई पाओ, बोली चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर।

परवार पार के दानिया, परवार पार के दानिया लिख ले आल पता मुझे जम डंडे।

गुरु सच्चा है, दुनिया नु सच दी रोशनी दे, गुरु दे दरबार विच कूड़े दी कोई थां उथे सच्चे ही सच ने। सच्चा गुरु सच दी तकड़ी तोल ले, किसे दी रैत नहीं कर, फिर मेहरवान भी साचा साहेब साद मेहरो। सच्चा भी है ते मेहरो, सदा मेहर। जिस तरह माता पिता दी सारे बच्चियां ते मेहर है, माता पिता दे मन च किसे बच्चे दे मुतलक भी बुरियाई, माता पिता दी ए हर समय कोशिश होंदी है कि साडे बच्चे सुखी है। ए संत मित्र उस वाहिगुरु दी उस्तत कर करनी बनदी, जिस वाहिगुरु ने जिन कन की ते अखी नाक जिन जेबा दिती बोले था एडिया अमल वस्तु दिती ओदी उस्तत कर, ओदी हमेशा सिफत। बंदे को कुछ मिल जाए असी ओदा धन्यवाद कर, ओदा थैंक्स सदा कर। डॉक्टर साहब अख विच मुफ्त दवाई पा देवे उसके असी रीढ़ी हो जाए, मुफ्त फीस कोई नहीं दे। साडे मन च उसका कितना सत्कार बन। पर हजूर फरमाउंदे ने जिस डॉक्टर ने मुफ्त दवाई पा दिती तेरी अख विच ओदा तू शुकराना करदा है, पर जिस मालिक ने तेनू मुफ्त अखा दितियां ओदा भी शुकराना कर, ओदी भी सिफत। तो कीर्तन सिफत, कीर्तन कीर्त प्रभ की गाव मेरी रस्म। आपा सारे मालिक दी सिफत ही जुड़े, सिफत करन वाला या सुनन वाला उनू मिलिया की। हजूर फरमाउंदे ने जिसनू बख्शे सिफत सालाहा नानक पातशाही पातशाह। ओ पातशाह प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान, उस्तत तो तुहाडे हुक्म अनुसार सेवक गुरबाणी का कीर्तन कर। अगली पंक्ति साहबां ने श्रोतियां वास्ते फरमाई है कि सावधान चौकड़े मार के बैठिए, मन एकाग्र तुरदा तुरदा पानी एक थां ते खड़ा हो जाए ना ओदे विचों मुंह दिसण लग जांदा, चलदा पानी खड़ो जाए शीशे दा कम दिंदा, चलदा पानी खड़ो जाए विचों मुंह दिसदा प्यारी साध संगत। नाम बाणी कीर्तन दे सदके जी मन एकाग्र हो जाए उस मन दे अंदरों धन गुरु नानक पातशाह दिसदा। मन दा जुड़ना ही गुरु दे सारे साचा साहेब सद मेहर। माता पिता दी हर बच्चे वास्ते पसंद, जे मां किसे वेले बच्चे दी गलती नु वेख के कह देंदी है मर जा,

सच में तुसी सारे पागल वाले जो अपने आप नूं नाम नाल जोड़े केड़े प्यार नाल रसना ने वाहिगुरु वाहिगुरु कहते सदा जपे रसन इस वास्ते मुड़ मुड़ वाहिगुरु वाहिगुरु कह या तो वाहिगुरु नाल प्यार पै जाए वो बड़ा मुश्किल है साडा दुनियादारी नाल प्यार कम्मा नाल प्यार है दुकाना नाल प्यार है दोस्तां मित्रां नाल प्यार है वाहिगुरु नाल तो प्यार पैंदा ही या तो प्यार पै जाए या प्यार प्राप्त करने वास्ते वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप शुरू कर दे या तो प्यार हो जाए या उहदे प्यार दी प्राप्ति वास्ते केड़ा साधन है उहदी याद हर समय याद करदे आम कहावत है ना जिहनूं याद करिए उह भी तां याद करे इस वास्ते वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हर समय करे बच्चियां तो ही कराया करो निके निके बच्चे मातावां दा फर्ज है अमृत वेले उठा के बच्चे उठदे हन उहनां नूं आके सोने जुड़े करके सोने केसां दी संभाल करके बच्चे ओ वाहिगुरु वाहिगुरु जो ए प्यार वधदा जो जो प्यार वधदा जाएगा त्यों त्यों प्यारा नेड़े नेड़े आंदा जाएगा अज तक लो प्यारा किस तरह बख्शिश पिया करता है ते इधर भाई जोगा सिंह दे अंदर जड़ी हौमे दा बीर सी हुण दरख्त बन गया नाना चलिया मेरे तो बगैर गुरु दा काम चल मना छेती पहुंच तुरदा तुरदा आई जोगा सिंह होशियारपुर पहुंच शाम दा टाइम हो गया दीवा बत्ती जल गए भाई जोगा सिंह ने सोचे सुने होशियारपुर बड़ा सुंदर शहर है चलो मना सैर ही करिए जिस वेले मन कमजोर हो जाए ना उस वेले सैलानी बन जाए शरीर नूं बुखार हो जाए शरीर कमजोर होता जाता कमजोर शरीर नूं सर्दी भी छेती लगती है गर्मी भी छेती इसे तरह जिस मन नूं हौमे दा बुखार लग जाए वह मन कमजोर हो जाता है उस मन दे उत्ते दुखां सुखां दा छेती असर होंदा है दुखां ते सुख ये कमजोर मन दी निशान कई इंसान जे सुख आ गए तां भी रब नूं भुल जांदा ये कमजोरी है इंसान जे कोई दुख का मोड़ आ गया तां भी रब तू नास्तक हो जी मैं रोज गुरुद्वारे जांदा सी मैनू दुख क्यों मिले आखो तेरी गुरुद्वारे ही नहीं जा एक कमजोरी पर जिथे मन बलवान होवेगा वो तो अरदास करेगा केतिया दुख भूख सद मारे भी दात तेरी दाते भी दात सिखती अवस्था जे सुख दे ता तुझे अराधी दुख भी घबरना नहीं मन तैरिया कला नहीं ले जाए ये मोड़ हम जे मोड़ ना है तो दूजा रस्ता नहीं मिलता जीवन के अंदर भी मोड़ पर इन्हों की सावधानता वास्ते शब्द हर समय शब्द मन कमजोर होया सैलानी बने नाल दे सिंह धर्मशाले आराम करने वास्ते कहा आप भाई जोगा सिंह हुशियारपुर दलिया बाजार च कर एक बाजार चो लंघे चवारे ते तके की वेखिया प्यारी सात संगत फरीद जी ने लिखिया है फरीदा ए दस गंदला धरिया खंड वे दिया गंदला उत्ते खंड गलेसी होई की तकिया वेसवा वे मन कमजोर होया हो सी मोया गया किसे महापुरुष ने लिखिया हुशियारपुर पहुंच के होना सी हुशियार पर एक वेसवा वेख के दिती सुरत ने ख्याल आया चवारे ते चढ़ जा पर नाल ही भाई जोगा सिंह ने सोचा मन आनंदपुर साहब इथों नेड़े है कोई वेगा ना हो अजे नहीं जा कोई समय ठहरे तो हुण भाई जोगा सिंह प्यारी सात संगत वेसवा दे चवारे ते जेड़ी पौड़ी सी पहली पौड़ी दे जिस वेले पैर रखे
ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੱਕੇ ਨਾਰ ਪਰ

तेरी सूरत सादी सिखा अपनी शक्ल वाला की आखे तेरी सूरत सादी एक ही मन

भाई जोगा सिंह पहुंचे हजूर ने दूरों ही तक देखे प्यारी साध संगत जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता वो भाई जोगा सिंह आ गया आ जा जोगिया साढ़े कोल आज भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे भाई जोगा सिंह भाई आखा जी आया सोना सिख तू है सरदार बीबा तर नार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार दी भाई जोगा सिंह सोच मन मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी जे अंतर जामी होंदा तो हुशियारपुर की करतूत नू जानदा जे हुशियारपुर की करतूत नू जानदा होंदा तो मेनू सजा दे पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर ते जे गुरु अंतर जामी नी जे गुरु इथों दी नहीं जानदा तो मेरी दरगाह किवें बां फड़ेगा बारह साल एवें गुरु की सेवा की आखो सी अंतर जामी सदगुरु सोचन लग सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है हुण अशरदक दे खाते पिया पैंदा गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया हुंदा हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने तकिया इतना नूर सी साहबां दे चेहरे ते नजरां नीवियां हो हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं वेंदा तकदा फिर खांदा तीजी वेरी जसेले साहबां ने किया जोगिया मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने जसेले कलगीधर पातशाह वल तकिया भाई जोगा सिंह हैरान हो गया कंबण लग गया की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहण वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह पातशाह मैं पापी हां मैनू बख्श पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया जे संगत च पोल ना खो हजूर कहन लगे जोगिया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अनिठ पिया करदा सी पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बड़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप ते तू कहना गुरु नू पता है नहीं तो भाई जोगा से कहन लगा महाराज ए भी चंगा होया अज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर कलगीधर पातशाह जी कहन लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है मेरी अजमाइश की थी है भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माध गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जोगिया मेनू अगे भी सिखा ने बड़ा अजमाया पर मैं इम्तिहान च पूरा उतरे अजमायश पूरा पहले जामे विच सिख ने अजमाया बाबर दी जेल च अरदास की थी मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीट पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै तो जो गया मैं संगतां दा हुक्म सिर मथे रखे जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू ने घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मन के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बलदी रेत पाई पर मैं अजमाइश पूरा बिधि चंद ने मेनू अजमाया छेवे जांदे दुशाले लैके भज्जा जांदा पिछे बादशाह दी फौज आ बिधि चंद ने छेवें पातशाह दा ध्यान करके पठियारी दे बलदे पठ भी छाल मार हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ छेवें पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघा ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो हजूर कहन लगे जोगिया फिर बिधि चंद नू तत्ती वारी लगन दिती
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ

0: बादशाह मेनू बख्श, मैं भूल गया। हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकल। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं। भूल गया रो रो के भाई जोगा सिंह का मन हौला फुल हो गया। अदूर कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास लिखे प्यारी सास संगत भाई गंगा सिंह ने दो लावा लिया ते दो नहीं।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day around the world.

कोड़िया पही करना कुंडला पही तेधारी है, देखे किता अपना दर्क चिपक की सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई मारी है, जिसके री प्राण है।

0: जल चढ़ाओ, फिर निरंजन मचाओ,
1: सिख सिख गुण बिचाओ, नदी कंगाई पाओ, मुझे चक्कर।

जारो राम को, पोप जारो राम को, मेरा कांडा लात्या जाए रे। हम बन जारो राम को, हम बन

0: हर हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो
0: हर हर नाम निदान।

सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सत समावे, एक कह रहे प्रभु राम नाम देवा।

पंड मंगन भी आए पंडो में दोस्ती पंडो चले रहा है पंड मुआ पंड पालिया पंड बंदा सो के मुंडा के राजा पंडो ही पंडो के पंडे बाजना कोई ना पंडे वारा कुछ जा सोए।

0: కృష్ణ పరసాలు బాపు ఆశ్రమే తల్లి పైమా నా కృష్ణ కృష్ణలే
1: जोड़ी हो सब में मुल्ता की हवा बीजे बिकमंगे मुतने खोइनिया
2: माल जाने दोस्ती से देना वे राज जी हाँ जाने ते हो वर्ते में कुको निर्जास बस तुम्र बस मांगे तुझे हो वे पास साहिब से दी हुक्म चले कहीं बने अर

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पईआं जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पईआं। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिए, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा।

के मन लाजुम रस, अवरा पै के मन लाजुम रस। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने, पाई जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा वो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज बचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत खडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा

सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों पे नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला दा इस शब्द इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं कि ऐ स्त्री ऐ जीव स्त्री जब तेरा प्रिय प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ होया, श्रृंगार का की मतलब है? जब फिर ही नहीं, फिर वाली ही नहीं तो तेरे श्रृंगारा का की मायना? श्रृंगार ते फिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं ते बिना फिर तो श्रृंगार करने वाली औरत नूं कहिंदे हन दर घर ढोई नाल है। उसनूं ना दर घर दे विच किते भी कोई ढोई नहीं हुंदी, दरगाह झूठ खुआर अते दरगाह दे विच ओ झूठी हुंदी है क्योंकि उसने किस लई श्रृंगार किया अते ओ खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नूं पिछले कीर्तना दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जब तेरा अंदर ही गलिया पिया है, सब गुण तेरे गल चुके हैं, अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी, तेरे सारे ही गुण गल गए हैं, सारे तेरे गुण गल गए हैं, फिर तो दूर जान नाल, फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे, मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया, एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की पत्नी सी, औरत सी, ए काया जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई? फिर तू सुहागण ना रही, फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा। अते उस फिर तो वाहिगुरु तो अकाल पुरख तो आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असी सुनिया सी ना, हर बिसरत तेरे गुण गले, जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं, अंदर टोटल रॉटन हो चुका है तो तेरे बाहरले श्रृंगार, बाहरलियां सुगंधियां, बाहरली सजावट, मांग छपाया होया संधूर, पहने हुए गहने कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नूं ए छुपा सकेंगे? जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं, रटन हो चुके हैं, अंदर तेरी दी ए तस्वीर है तो तेरे श्रृंगार का की अर्थ है? गुण गल चुके हैं, आज दे इस कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना विचारना, क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं कि ऐ स्त्री
ਅਜੀਬ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਫਿਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਫਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ।

तेरने ता मिलना है जे गुण होन वो तेरे गल चुके हैं। इस शरीरा मेरे इस जग में कि क्या तू कर्म कमाया, तू कुछ भी नहीं कमाया, उस वाहिगुरु नालों दूर होके हर बिस्तर तेरे गुण गलिया। शरीर नू तू समझा ही नहीं, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन मंदर वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन दुर्लभता वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन सब तो उत्तम अते श्रेष्ठ होने वाले, इस दे विच गुण ही नहीं हन कि इस नू सरोवर आख्या जाए, सारे गुण तैं गाल ले हन लोभ नाल, लालच नाल, हंकार नाल, क्रोध नाल, काम नाल, आद चीजां दे नाल तैं सारे गुण गाल ले हन। काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा टाले, सारे गुण तैं गाल ले हन, ते गुणा तो बिना तो फिर मिलना ही नहीं है। कहंदे हन जे गुण हो वंता फिर मिले, अपने दिल दी तख्ती उते इस नू नोट कर लो, हिरदे उते इस नू उकर लो, इस नू लिख लो कि अकाल पुरख वाहिगुरु दी भक्ति जो है, अकाल पुरख वाहिगुरु दी जो प्राप्ति है, वो गुणा दे उते आधारित है। और वो गुण जिन्हां दी कोई कीमत नहीं है, वो बाजार विकदे नहीं हैं, तुसी खरीद नहीं सकते, अमुल गुण हैं। अते अमुल गुणा दा तू व्यापार नहीं कीता, अवगुणा दा तू व्यापार कर दी रही है, अवगुण तू सिख दी रही है, लेकिन ओ ते अमुल गुण हैं। अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी, अमुल भंडार। कहंदे हन जे

अकाल पुरख वाहिगुरु पति दे मिलन तो बिना इस काया नू जो मर्जी सजा लो, श्रृंगार लो, सुंदर बना लो, कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो सब श्रृंगार विकार, सारे विकार, क्योंकि अंदर ले सारे गुण गल चुके हैं। आज दी सारी ह्यूमन सोसाइटी दी, एक कौम दी नहीं, सारी ह्यूमन सोसाइटी दी ए हालत है कि हरी वाहिगुरु तो विसरन दे नाल अंदर ले शुभ गुण गल चुके हैं, पर श्रृंगार दी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी ब्लूम कर रही है। फैब्रिक इंडस्ट्री हुई, डिजाइन इंडस्ट्री हुई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हुई, ऐ तमाम किस्म दी जो इंडस्ट्रियां हैं, वाई दे आर फ्लरिशिंग सो मच, बिकॉज साडे अंदरले गुण उते रॉटन हो चुके हैं, उते गल चुके हैं। नाउ टू हाइड दैम, उन्हां नू लुकोण ले असी अपने आप नू बाहरों सुंदर दिसण दी कोशिश करदे हां। पर कितने भी असी सुंदर होइए, जदों ही असी कौड़ा बोलांगे तो अंदरली असलियत ने जाहिर हो जाना। जदों असी हंकार करांगे उदों अंदरली जो ओह गलियापन है उसने जाहिर हो जाना। जदों असी रूढ़ होवांगे उदों उस अंदरले गलेपन ने जाहिर हो जाना है। तो कित्थे छपावांगे बाहरली खूबसूरती दे नाल अंदरली कुरूपता नूं? जे अंदर क्रूप है, फिल्थी है, अगली है, तो बाहरले श्रृंगार ने उसनू टक नहीं सकना। अते जितनी देर तक अंदर फिल्थी है, क्रूपता है, उतनी देर तक किसी ने प्यार भी नहीं करना, क्योंकि प्यार भी सुंदरता नू हुंदा है। अते सुंदरता गुणा दे विच हुंदी है, वस्तुआ दे विच नहीं हुंदी। गुरु बाबा जी बहुत डीप गल कर रहे हैं, कहते हैं तू पिरवाली नहीं, तेरे अंदर वो गुण नहीं हैं, फिर ते तो दूर है जो तू श्रृंगार कर दी फिर दी है। आओ श्रृंगार दे मतलब होर सुनिए। गुरु बाबा जी कहते हैं उन्हें गुणा नू वापस लिया। बस अज दे साडे कीर्तन दी जो थीम है, जो विचार है, वो ए है कि साडे गुण गल चुके हैं, उन्हें गुणा नू वापस लियाओ। किवें लियाना है वो भी विचारांगे, और उन्हें गुणा नू लियाण तो बिना जो अगे दी जो भक्ति है, अकाल पुरख वाहिगुरु नू मिलन दे जो होर ढंग हैं, एडवांस लेवल हैं, उन्हां तक तुसी पहुंच ही नहीं सकते जे तुहाडे कोल बेसिक जो मैरिट्स होनियां चाहीदियां हन, गुण होने चाहिए हन, अगर उही नहीं हन, जब बेसिक्स ही नहीं हन तो अगां दी गल किवें हो सकती है। आओ सुनो, गुरु महाराज जी आखदे हन, हुण पुछिए सच्चे पातशाह गुण किवें लियाईए, क्योंकि आप जी ते ए आखदे हो के सुहागणी श्रृंगार बनाया गुण का गलहार। आप जी दी बाणी च ते ए दस्या है कि गुणा दा ही श्रृंगार हुंदा है, गुणा दा ही श्रृंगार हुंदा है। गुरु बाबा जी आखदे हन ए जिहड़ी काया गल चुकी है ना, इस नूं हुण बदल डालो। कहिंदे काया कोमल फुल गुण, एक काया एक बहुत कोमल जिही टहणी है, कोमल जही एक प्लांट है, कोमल जही टहणी है, काया कोमल फुल गुण, अते गुणा दे फुल इस काया दे उते नजर आने चाहिए। काया कोमल फुल गुण नानक गुप्पस माल, गुप्पस दा मतलब गुंद, प्रो बना माला, काया दी टहणी दे उते ही गुणा दे फुल तेरे लग जान, अते उना गुणा दे फुल्लां नू चुन चुन के तू माला बना, एनी फुल्ली रौंग करे, एना फुल्लां दे उत्ते ते ओ रीझदा है, प्रसन्न हुंदा है, खुश हुंदा है। ए फुल उसनू अट्रैक्ट कर सकदे हन जिहड़े गुणा दे फुल हन। अवर के चुणिए डाल, कहिंदे हो डालियां तो की फुल तोड़दे फिरदे हो, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਡਾਲ, ਡਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਚੁਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁੱਪ ਸਮਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਪਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਲ ਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਗੁਣੇ ਵਸ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਣ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहिंदे आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नूं, जदों ओ पत्नी बनदी है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जांदी है। कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरू भी अपनी दुल्हन नूं उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणा दे नाल श्रृंगारी पई होवे, श्रृंगारी पई हो। पर केड़े केड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार की गल करते हैं? सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना लो, इस श्रृंगार बना लो। ऐ श्रृंगार है, ऐ गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के काम आना। क्योंकि जदों लफ्ज़ दो गुरबाणी असूल है कट्ठे आणगे सत संतोख, उत्थे सत दा मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ए असूल सत संतोख, सत दा मतलब है संतोख, और सत नूं जो महाराज जी ने जोड़िया है उसदे विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देण वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नूं देण वेले नहीं संतोखी बन जाना। उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं है, दूसरे प्रति असी संतोखी, जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उहनां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यो ल्यो करते फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवां लै लवां लै लवां, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिरदे। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार दा सवाल आंदा है, देण दा सवाल आंदा है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नूं हर्ट ना करना, किसे हर्ट होए नूं देख के उसनूं बर्दाश्त ना करना। तुहाडे दिल च दया आनी चाहिए, दया एक गुण है, दया एक गुण है। कहिंदे सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। हुण अपनी जिंदगी च जिन्हां ने पुछिया है ये सब तो पहला सबक है। कल दे कीर्तन च इस तो अगली गल मन और आत्मा दी कीती जाएगी। दास ने पहले दिन जो शब्द गायन किया सी उस दे विच गुरु बाबा जी ने तिन्ने ही चीजां नूं एड्रेस किया सी, बॉडी माइंड एंड सोल। अज असी सिर्फ बॉडी दे ही लैवल ते, उठन बैठन दे लैवल ते, अपने इंट्रैक्शनस दे विच, एक दूसरे दे नाल मिलन गिलन दे विच, जो बोलन चलन दे विच, तमाम जो गुण हन जिन्हां दी ग्राउंड तो बिना भक्ति आरंभ नहीं हो सकती, अज असी उन्हां दी गल कर रहे हैं। मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाईयां तत मिठत। हुण जे तुहाडे सुभाअ दे विच कौड़ापन है, बिटरनेस है, रूडनेस है, मिठास नहीं है, तो फिर तुहाडे परमात्मा नजदीक नहीं आ सकदा, तुसी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुण है। सो इसनू अज ही त्याग के चले जाओ, और अज सुगन कसम लाओ महाराज के चरण च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल, इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा, मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस होए। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण, क्योंकि अवगुण ने वाहिगुरु नूं दूर कर देना, वो अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवे बनना, किसे तो अपने आप नूं सुपीरियर ना समझना। ये नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसे भी तरह मेरे तो कम हैं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, ये आदतां हन, ये सुभा हन, पहला ये तारण करने हैं। अज असी
ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਅਗਲੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਾਨ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਕੰਕਰ ਅਦਰਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ

आज साढ़े अंदर सोच नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। आप पे चक्की जाओ और आप पे खाई जाओ। सील, संयम, संयम का अर्थ है डिसिप्लिन। ये सारे गुण हैं। डिसिप्लिन दे विच लाइफ होनी चाहिए है कि इतने बजे ही मैं खाना है और इस तो अलावा मैं खाना नहीं, इतना खाना है, इस तो ज्यादा कोई परसू भी करे ता भी मैं खाना नहीं, वो संयम है। इतने बजे मैं जाग जाना है क्योंकि मैं अभ्यास करना है, इतने बजे सौ जाना है क्योंकि अमृत वेले उठना है, वो डिसिप्लिन है। अननेसेसरी कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अते सिर्फ लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते, लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते रात दे एक एक दो दो बजे तक पार्टियां च बैठे रहे थे, अमृत वेले कदों उठोगे तुसीं? उस दे लिए डिसिप्लिन होना चाहिदा है। उस दे वास्ते लोगों की कई दफा अगर नाराजगी सहारनी पवे तो गुरमुख जो है वह उसनू भी कह दिंदा है कि मेरे डिसिप्लिन दे विच फर्क पैंदा है। डिसिप्लिन दे विच रहना, संयम दे विच रहना, सील, संयम, सोच, कहिंदे ऐ तीन चीजां ते भन्ने ही दित्तियां हन। सील, संयम, सोच, सोच दा अर्थ हुंदा है बहुत पवित्रताई दे नाल इस मंदिर नू वाहिगुरु दा मंदिर समझ के कि मैं वाहिगुरु नू सर्व कर रहा हां, बहुत ही साफ सुथरे ढंग दे नाल प्रेम नाल सर्व करना है, ना कि जूठे मूठे हत्थां नाल आप ही चक्की जाओ, आप ही खाई जाओ, आप ही पाई जाओ। सुच का नामो निशान नहीं रहा, असी नाले खाई जाने हैं, नाले लिखी जाने हैं, नाले खाई जाने हैं, नाले टेलीफोन अटेंड करी जाने हैं, वही झूठे हाथ टेलीफोन लगते हैं, फिर कोई दूसरा आके उसको पकड़ता है। सील, संयम, सुच, पन्नी, कहते पन्न दिती है, ये अवगुण हैं। खाना खाज अहाज, अते खाना साडा उस दे विच हुण सानू होश ही नहीं रही, ये बनाया किसने है, किवें बनाया है, साफ सुथरा होके बनाया है या नहीं बनाया, खाज अहाज, जो गलत मलत है वो असी खाण लग पए। रेस्टोरेंट्स दे विच असी खाने हैं, तुसीं कदे सोचो ते सही, वो लोग जो अंदर रोस्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े ओवन्स दे आले दुआले खड़े होके कुक कर रहे हैं, वो बहुत मन दी शांति च ते प्रेम दे नाल कुक कर रहे हैं, को भावना दे नाल तुहाडे सामने प्लेट लिया के रखते हैं, पता नहीं कितने जले पुजे हैं अंदरों बेचारे सारे दिन दे थके मंदे, ते उस किस्म दी एनर्जी उस फूड दे विच आंदी है जिसने वो तैयार किया है, तो असीं बाहर बैठ के उसनू रैलिश करते हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड दे नाल उसने बनाया है सानू कोई पता नहीं है, उसके हाथ साफ सन या नहीं सन सानू पता नहीं है, सुचे सन या नहीं सन, कितने ऐसा तो नहीं कि साडे ही खाने नू उसने पहला टेस्ट करके देखा हो कि स्पाइस ठीक है या नहीं है, हाउ डू यू नो, पर साडे च कोई अज परहेज ही नहीं है, जिथे मर्जी बैठ जाओ और खा लो। दास ट्रैवल कर रहा सी लंडन तो मस्कट तक की फ्लाइट दे विच, ओ एयर होस्टेस दो तीन दफा आईया पूछन लगियां कि मिस्टर सिंह यू वांट एनीथिंग, मैं कहा नो आई हैव माई ओन वाटर एंड समथिंग टू ईट। फाइनली उन्होंने मैंने पूछा कि What is the reason you are not taking even tea from us, anything, even water? मैं क्या इस दा कारण ये है कि इको ही ट्रॉली दे विचों तुसी मीट भी सर्व करी जा रहे हो, अल्कोहल भी सर्व करी जा रहे हो, बीयर भी सर्व करी जा रहे हो, फिर लोकां दे जूठे भांडे चक चक के फिर वापस रखी जा रहे हो। मैं क्या हैव यू वॉश यूर हैंड्स, कहिंदी नो, मैं क्या देन आई कैनॉट टेक फ्रॉम यू, इफ यू वॉन्ट टू गिव मी समथिंग गो एंड वॉश यूर हैंड्स, क्योंकि क्लीन नहीं, तो कहते हु कैन बॉदर फॉर ऑल दैट, वी कांट बी बॉदर फॉर ऑल दैट, इस करके मैं कहा मैं तो कुछ लैके खांदा नहीं। ए अवगुण है, असा ए तमाम कुछ जो ग्राउंड है इसनू पहला सीखना है, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चलना, ए तमाम पहनना, ए सब कुछ सीखना है। और सब तो वड्डे जो गुण हैं वो है निम्रता, वो हो सबना की रेन का ताओ आओ हमारे पास। महाराज जी कहते इतनी निम्रता तेरे अंदर होवे कि तू सारे चरणा की धूड़ बनिया पिया होवे ता जाके साडे पास

आई वो सबना की रेनका ता आओ हमारे पास मिठत नीवी नानका गुण चिंगिया तत् फिक्का बोलन की गुंजाइश ही नहीं छड़ी महाराज ने नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगाह सटिए मूर थुक्का फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए पाणा जुतियां नू आखते हैं कहते हैं दरगाह च उसके जुतियां पैंदी हम नाउ थिंक जदों भी तुसी फिक्का बोले हो तो तुहाडे उते आ कुछ लागू हुंदा है फिक्का दरगाह सटिए मूर थुक्का फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए उसनू मूर्ख आख्या जांदा है तो किस तरह फिक्का बोल सकते हो ऐ तमाम चीजा नु ऑल्टर करना है ना इन्हों तमाम चीजा नु बदलना है ये सारे शुभ गुण अपने अंदर धारण करने हैं जे गुण नहीं हैं तो विण गुण कीते भगत ना होए किसे तो जाके भक्ति का सवाल ना पूछना कि भक्ति किवें करनी है जे उसकी ग्राउंड ही तैयार नहीं है जे शुभ गुण ही तैयार नहीं है अज गुणा की गल की है विच इज द ग्राउंड वर्क कल असी जो मन और आत्मा की थोड़ी जी विचार सिमरन अभ्यास भी विचार करांगे आप जी कृपा करके समय से आओ ताकि कल शाम दे कीर्तन सारे कीर्तन कंक्लूड हो जाएंगे तो आओ प्रेम नाल इस पंक्ति नु गाओ कि मुंदे फिर बिन क्या श्रृंगार फिर अकाल पुरख वाहिगुरु ता नेड़े आंदा है जे गुण होन जे ओ गुण तेरे अंदर गले पए हन ते ओ ते तेरे तो बहुत दूर चले गया है ते तू अपने आप दी जो फिल्थ है अगली नस है उसनु तो सिर्फ टकी जा रही है श्रृंगार करके सुंदर कपड़िया नाल गहनिया नाल कॉस्मेटिक्स नाल परफ्यूम्स आदि नाल कहंदे हन इस श्रृंगार दे नाल वाहिगुरु ने नेड़े नहीं आना क्योंकि उसनु तेरी अंदरली हालत का पता है कि उत्थे हर दस तेरे गुण गले ये तेरी हालत है प्रेम नाल गाओ समाप्त

कर कराए सी। तो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी, हुक्म ने कुरबान तक में कह महल पाए सी। खसमे भावे सो करे मन चिंदिया सुफल पाए सी।

ताप अपना पहले कसन लिया। जरण न हे जगत गत गर्भ डिया मंदक सिनखिया पड़खे उपजिया मूर्ख नाना लुजिया।

प्यारे गुरुदेव जी, सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी के चरण कमलों से नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री राग महला पहला दा इस शब्द, इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, कि ऐ स्त्री, ऐ जीव स्त्री, जब तेरा त्रिही प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ होया? श्रृंगार का की मतलब है? जब फिर ही नहीं, फिर वाली ही नहीं, तो तेरे श्रृंगारा का की मायने? श्रृंगार ते फिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं, तो बिना फिर तो श्रृंगार करने वाली औरत नू कहिंदे हन दर घर ढोई नाल है। उसनू ना दर घर दे विच किते भी कोई ढोई नहीं हुंदी। दरगाह झूठ खुआर अते दरगाह दे विच वो झूठी हुंदी है, क्योंकि उसने किस लई श्रृंगार किया अते वो खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नू पिछले कीर्तन

अकाल पुरख वाहिगुरु पति दे मिलन तो बिना इस काया नू जो मर्जी सजा लो श्रृंगार लो सुंदर बना लो कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो सब श्रृंगार विकार, सारे विकार, क्योंकि अंदर ले सारे गुण डल चुके हैं। आज की सारी ह्यूमन सोसाइटी दी, एक कौम दी नहीं, सारी ह्यूमन सोसाइटी दी ये हालत है कि हरि वाहिगुरु तो विसरन दे नाल अंदर ले शुभ गुण गल चुके हैं, पर श्रृंगार दी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी ब्लूम कर रही है। फैब्रिक इंडस्ट्री हुई, डिजाइन इंडस्ट्री हुई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हुई, ऐ तमाम किस्म दी जो इंडस्ट्रियां हैं, वाई दे आर फ्लरिशिंग सो मच, बिकॉज साढ़े अंदरले गुण उते रॉटन हो चुके हैं, उते गल चुके हैं, नाउ टू हाइड दैम, उन्होंने लुकाने लई असी अपने आप नू बाहरों सुंदर दिसण की कोशिश करते हैं। पर कितने भी असी सुंदर होइए, जदों ही असी कौड़ा बोलांगे तो अंदरली असलियत ने जाहिर हो जाना है, जदों असी हंकार करांगे उदों अंदरली जो ओह गलियापन है उसने जाहिर हो जाना है, जदों असी रूढ़ होवांगे उदों उस अंदरले गलेपन ने जाहिर हो जाना है। तो कित्थे छपावांगे बाहरली खूबसूरती दे नाल अंदरली क्रूपता नू, जे अंदर क्रूप है, फिल्थी है, अगली है, तो बाहरले श्रृंगार ने उसनू टक नहीं सकना। अते जितनी देर तक अंदर फिलती है, क्रूपता है, उतनी देर तक किसी ने प्यार भी नहीं करना, क्योंकि प्यार भी सुंदरता नू हुंदा है, अते सुंदरता गुणा दे विच हुंदी है, वस्तुआं दे विच नहीं हुंदी। गुरु बाबा जी बहुत दीप गल कर रहे हैं, कहते हैं तू पिरवाली नहीं, तेरे अंदर वो गुण नहीं हन, फिर ते तो दूर है जो तू श्रृंगार कर दी फिर दी है। आओ श्रृंगार दे मतलब होर सुनिए, गुरु बाबा जी कहते हैं उन्हें गुणा नू वापस लिया। बस अज दे साडे कीर्तन दी जो थीम है, जो विचार है, वो ए है कि साडे गुण गल चुके हैं, उन्हें गुणा नू वापस लियाओ। किवें लियाना है वो भी विचारांगे, और उन्हें गुणा नू लियाण तो बिना जो अगे दी जो भक्ति है, अकाल पुरख वाहिगुरु नू मिलन दे जो होर ढंग हैं, एडवांस लैवल हैं, उन्हां तक तुसीं पहुंच ही नहीं सकते जे तुहाडे कोल बेसिक जो मैरिट्स होनिया चाहिदियां हन, गुण होने चाहिए हैं, अगर उही नहीं हैं, जब बेसिक्स ही नहीं हैं, तो अगां दी गल किवें हो सकती है। आओ सुनो, गुरु महाराज जी आखदे हैं हुण पुछिए सच्चे पातशाह गुण किवें लियाईए, क्योंकि आप जी ते ए आखदे हो कि सुहागणी श्रृंगार बनाया गुण का गलहार। आप जी दी बाणी च ते ए दस्या है कि गुणा दा ही श्रृंगार हुंदा है, गुणा दा ही श्रृंगार हुंदा है। गुरु बाबा जी आखदे हन ए जिहड़ी काया गल चुकी है ना, इस नूं हुण बदल डालो। कहिंदे काया कोमल फुल गुण, एक काया एक बहुत कोमल जिही टहणी है, कोमल जही एक प्लांट है, कोमल जही टहणी है, काया कोमल फुल गुण, अते गुणा दे फुल इस काया दे उते नजर आने चाहिए। काया कोमल फुल गुण नानक गुप्पस माल, गुप्पस दा मतलब गुंद, प्रो बना माला, काया दी टाणी दे उत्ते ही गुणा दे फुल तेरे लग जान, अते उना गुणा दे फुलां नू चुन चुन के तू माला बना, एनी फुली रौंग करे एना फुलां दे उत्ते ते ओ रीझदा है, प्रसन्न हुंदा है, खुश हुंदा है, ए फुल उसनू अट्रैक्ट कर सकते हैं जिहड़े गुणा दे फुल हन। अवर के चुनिए डाल, कहिंदे हो डालियां तो की फुल तोड़दे फिरदे हो, तुसी बाहरों डालियां नालों टाणियां नालों फुल लिया के तोड़ के गुरु बाबे दे अगे रख दिंदे हो, कहिंदे ओ की करदे पए हो, अवर के चुनिए डाल, डालियां तो क्यों फुल चुनदे फिरदे हो, काया रूपी टाणी दे उते तुहाडे गुणा दा कोई फुल नजर नहीं आंदा, काया रूपी टाणी दे उते कहिंदे गुणा दे फुल होण।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁੱਪ ਸਮਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਪਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਲ ਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਗੁਣੇ ਵਸ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਣ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ